उम्मीद है कि दोस्तों की पसंद आया। इसी दिशा दौरान साढ़े दोस्त राजा नसीम गुंडू साहब उन्हें फोन किया सी ते सब तो सलामत कर रहे सन। पर गुंडू जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने ना, तो इसे पता लगा कि बैटरियां कोई नवी पई हैं तो तुसा भी रेडियो बुझ रहे हो जी। माशाल्लाह क्या बात है जनाब। तो उन्होंने तरफों इस सब दोस्तों वास्ते स्पैशली चैन जमान साहब राजा खान तो सुफी मुश्ताक कौर तो होर बाकी जो दोस्त है उन्होंने सब दोस्तों वास्ते ये उन्होंने फरमाइश की है। सुनो पसंद इसी ये हम आवाज़ जरा टूटी उपर करेला

उम्मीद है कि दोस्तों की पसंद आया सी, जबरदस्त सी। तो असं किसी दोस्त ने अब व्हाट्सएप किया अपने दोस्त उन्होंने जी जमील साहब, अरशद साहब तो अंसर साहब, तो उन्होंने फरमाइश भी की है कोई अपने सैफ मलूक नहीं, वो तो पहले हाफ एन आवर सैफ मलूक होना तो कोई मसला नहीं है। चलो नैक्सट प्रोग्राम इन जरूर जनाब तक सनासा है। तो हम नैक्सट स्पैशली सारे दोस्त मोहम्मद हफीज साहब जे अपने शहरों वाले उन्होंने तरफों इस फरमाइश है ते उन्होंने पसंद है जनाब सुनो, तो वो भी बड़े हमेशा बड़े इतने प्रोग्राम भी करने रहे लेकिन हूँ छोड़ी गए नहीं वापस आए रहे, तो उन्हें एक भेजी सी मैं चलो सुनाने तुसें सुनो पसंद है सी।

उम्मीद है कि साढ़े दोस्त हफीज साहब और बाकी दोस्तों की पसंद आई उसी जबरदस्त सी बहुत तो जितने दोस्त साथ देने सब दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुसना अपना लिंक एफएम है तो हम सुनो ये नेक्स्ट ये पसंद है सी।

उम्मीद है कि दोस्तें पसंद आया सी। मुमकिन सन इजाजत तुसें कोलों अल्लाह सोने वाला दुआ याद रखे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, अगर कोई गलती तो माफ़ करे। तो हूँ आखिरी समय दोस्तों।

0: My name is Rizwan Ishfaq.
1: My name is Asham.
2: My name is Azan Mudassir.
3: This is Ariba and you are listening to Link FM.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
8: And the winner is...
9: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
11: Sheffield's very own community radio station,
12: Link FM.
13: My name is Shireen.
14: My name is Abed Rahman.
15: My name is Sai Mudassir.
1: This is Rahan.
0: My name is Rizwan Ishfaq.
1: My name is Asham.
2: My name is Azan Mudassir.
3: This is Ariba and you are listening to Link FM.
11: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
12: Link FM.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद असगर है।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।
9: अरे रंगीले, अरे रंगीले, अरे रंगीले, प्यासी प्यासी हो जा।

0: conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, Lazier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Lazier solicitors is trading style of affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
1: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
2: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: खुश इखलाक अमला लाजवाब सर्विस AAMOT. अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की MOT नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की MOT एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की MOT का काबिले एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT, क्ले स्ट्रीट, अटकलीफ, शेफील्ड, S9 2VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 07867862585।
4: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
5: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
6: 96.7 Link FM.
7: You are listening to Link FM.
6: Listen live online at linkfm.org. Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

वेलकम बैक, खुश आमदेद तमाम सुनने वालों को। ये बताते चलें कि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है और हो सकता है कि आप कॉल कर रहे हों, टेक्स्ट कर रहे हों, तो इस वक्त आपकी और मेरी बात नहीं हो सकती। तो कोशिश किया करें कि अगर कहीं भी आप, अगर आपको कोई ख़ास कलाम सुनना है तो आप मैसेज कर दिया करें, ताकि वो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके लिए शामिल कर लेंगे जब हम दोबारा रिकॉर्ड करवाएंगे। ब्रेक के बाद अब चलते हैं, सिलसिला जारी रखते हैं और चलते हैं अगली कवाली की तरफ।

कवालियाँ अक्सर बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बड़ा ही बड़े इनमें एक मैसेज होता है। तो आज भी अभी आपने ये कवाली सुनी और इसके बाद आपके लिए एक और कवाली पेश करते हैं, ये सुनिए। और हमेशा की तरह ये भी शायद इतनी ही लंबी होगी कवाली, और ये हो सकता है कि हमें कमर्शियल ब्रेक की तरफ ले जाए। अगर ना भी हुआ तो हमारी मुलाकात अब ब्रेक के बाद ही होगी।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp

0: Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org. Link FM.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा इफ्तखार ठाकुर पे बोलना ते तुसी सुनने हो पे लिंक FM 96.7। बहुत मजा है सीने।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.

0: मशरक वुस्ता के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और यूरोप के अंदर, मेघाई इस अमेरिका के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। कोशिश करते हैं कि खबरें मोतबर ज़राए की खबरों के ज़रिए अपने प्रोग्राम को शुरू किया करें और फिर उन खबरों पर हम बातचीत भी करते हैं। दुख होता है, तकलीफ़ होती है, महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है यहाँ यूरोप के अंदर, यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस, फ्यूल की प्राइसेस, यहाँ यूके के अंदर, और फिर ज़ाहिर है कि बरसग़ीर के अंदर इंडिया है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और बाकी भी महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं। और उधर लॉन्ग मार्च भी, और इसी तरह आज़ाद कश्मीर की बात आती है तो हम उसकी भी बात करते हैं, आज भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सुनते रहिएगा प्रोग्राम हकाइक 96.7 एफएम। मौसम यहाँ यूके का बदल चुका है आज, बल्कि कल से अब दिन को मौसम कुछ बेहतर होता है, मुमकिन है कि कुछ दिनों के लिए, लेकिन शाम को अब सर्दी, वो सर्दी है। और अपना ख्याल रखिएगा इस मौसम के अंदर, और मज़ीद सर्दी पड़ेगी, कोई मसला नहीं है। गर्मी पड़ती है तब भी हम खुश नहीं, सर्दी पड़ती है तब भी हम खुश नहीं, बारिश होती है तब भी हम खुश नहीं, बारिश ना हो तब भी खुश नहीं। पिछले दिनों यहाँ शफील के अंदर मुझे पता है कि एक दो जगहों पर बारिश के लिए दुआ की गई, दुआ करना अच्छी बात है, तो यानी कि बारिश नहीं हो रही थी, ड्राई मौसम, खुश्क मौसम और बारिश की शदीद ज़रूरत थी। तो ये है यहाँ मौसम अब बदल रहा है, मज़ीद बदलेगा, सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी और ये अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, फिर नया साल, नए साल की बातें हम करेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मास्टर रज़ाक अजमल साहिब को अपने प्रोग्राम के अंदर वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जनाब,
0: आप खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी।
0: सर्दी है, गर्मी है?
1: जी जी सर्दी है जी, अब तो सर्दी शुरू होने वाली। आपने जिस तरह फरमाया कि मौसम बदल चुका है जी, हालात भी तब्दील होने चाहिए, बस मौसम ही बदलता रहता है। बहरहाल मौसम जो है इस दिनों जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। रात को मैं देख रहा था टेम्परेचर 8 डिग्री पर जो है सिंगल फिगर में आ चुका है, मौसम साफ था, लिहाजा 7-8 डिग्री और इसके बाद सर्दी की काफ़ी लहर है। दिन के बाद मौसम ठीक हो जाता है। बहरहाल ये सर्दियाँ जो हैं वो अब तो ये तकरीबन खिज़ा का मौसम जाड़ा जो ख़त्म होने के फौरन बाद जो है वो फिर शुरू हो जाएगा सर्दियों का मौसम। कुछ लोग ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि विंटर भी बड़ा जो है वो आज विंटर होगा, ये सख्त होगा। बहरहाल चलो ये तो अल्लाह खैर करे, लेकिन यह कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो है अभी दिन जो है ये भी काफ़ी इसकी जो है वो दौरानिया कम हो चुका है, रात लंबी होनी शुरू हो जाएगी, फिर 1 घंटा इस महीने के एंड पर घड़ियाँ भी पीछे हो जाएंगी, उस लिहाज से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो बहरहाल जो है वो अब स्कूलों में छुट्टी और इस तरीके से काम काज में लोग, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें जो है अब आने वाली, लिहाजा हमें अपने आप को जो है वो तैयार भी करना है। और घरों में सेंट्रल हीट है और सिस्टम जो है वो रोगनी गजाएँ हैं, रहा सब ये तो जो है ना आप माशा एक्सरसाइज भी करते हैं, तो बहरहाल जो है वो ये इन सब चीज़ें जो है बराबर बराबर साथ, एक्सरसाइज भी, खाना पीना भी, ये सब चीज़ें जो है ज़रूरत के मुताबिक जो है वो चलेंगी इंशाल्लाह।
0: अल्लाह रहम करे जी, इंशाल्लाह वो चलेंगी। गजाएँ ज़हर के पेड़ तो भरना पड़ता है ना,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कुछ गजाएँ हैं वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, एहतियात करनी चाहिए। और खाना खाते वक्त अपनी सेहत को पेश नज़र रखना चाहिए, जितना कम खाया जाए वो बेहतर है, और एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक्सरसाइज के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है, जिस भी उम्र में आप, बल्कि जितनी ज़्यादा उम्र हो जाती है एक्सरसाइज इतनी ही लाजमी हो जाती है, तो एक्सरसाइज हर सूरत में करनी चाहिए। सामिर नादरीन, प्रोग्राम के अंदर हम कभी यहाँ यूके से शुरू करते हैं, करते यूरोप की खबरें और करते करते फिर मशरक पुस्ता में पहुँचते हैं। अल्ताफ साहिब अगर वो पहुँचे इंशाल्लाह तो फिर हम उनसे यहाँ की खबरों पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्ग मार्च, तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च और सियासी मंजरनामे की जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर हम बातचीत करेंगे। आप यहाँ برطانیہ کے اندر

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Your very own community radio station.
16: Link FM.
17: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल.
15: जहाँ बातें बनते हैं, वही है Link FM. दिल से आपके साथ.
18: Link FM Sheffield.

0: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7. मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफर साथ-साथ करता रहूंगा.
2: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: This is Link FM.
17: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.

दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा पूरा मजा लेकर घर लौटें। आज की शाम की इब्तिदा हम कर रहे हैं एक गजल से। शायर हैं जनाब निदा फाजली, उसके बाद चंद नई गजलें पेश करेंगे, फिर जैसी जैसी आपकी फरमाइश रहेगी।

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: मंजिल जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड
2: ऑन 96.7 एफएम ऑनलाइन ऑन स्मार्टफोन एंड टैबलेट दिस इज लिंक एफएम
3: एनीवेयर यू गो लिंक एफएम इज ऑलवेज देयर विद यू. Listen online at linkfm.org.
4: Link FM.
5: अजीब किस्सा देखा खुदकुशी का. दुनिया से तंग आकर एक आशिक ने मोहब्बत कर ली.

0: Link FM, your number one community radio station.
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: You're listening to Link FM.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
3: Lizzie Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naziasolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571-009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या द क्लेम टीम .uk पर तलाश करें।
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: परेशान खलते हुए जी
7: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
7: ए एमओटी वाले है किधर?
8: ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नहीं करो ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
9: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
10: 96.7 Link FM.
0: You are listening to Link FM.
11: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
12: और हर सूर दिल को छो जाए,
13: वही है Link FM.
14: दिल से आपके साथ
15: Link FM.

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ। लिंक एफएम शेफील्ड।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन कियानी है।
5: मेरा नाम अहमद असगर है।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।
9: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Link FM, your number one community radio station.

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
1: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड,
3: bringing communities together, broadcasting from the Pakistan Muslim Center, Link FM. Link FM.

अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह आपके साथ साथ।

0: कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का। माफ़ी चाहती हूँ सामने। इस खूबसूरत नगमे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं आप ही के मेज़बान मोहम्मद यासीन और इफ़त हमीद। प्रोग्राम जो है ये आप ही का पसंदीदा प्रोग्राम है सामिन, और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आप उसी तरह पसंद करेंगे। ये प्रोग्राम जो आप सुहाना सफ़र सुन रहे हैं लिंक FM से, ये रात 9 बजे तक जारी रहेगा। सामिन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, आप खैर मकदम करते हैं। अगर आप इस वक्त घर पर हैं तो आराम से प्रोग्राम सुनिए, अगर आप ड्राइव कर रही हैं तो हैव अ सेफ जर्नी और आराम से प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी आप बहुत पसंद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम,
1: मोहब्बत वाला सलाम कबूल कीजिए। सामिन, आप हमारे गिर्द जो दायरा है, आप मेरी दुआओं का, आप मेरे इंतखाब की मुकद्दर लकीर हैं। साथ दीजिएगा आज हमारा इस खूबसूरत और प्यारे संगम में। आपको पता है ना कि बड़ी दूर से आए हैं, लेकिन ये प्रोग्राम आपके लिए हम पेश करेंगे। 2 घंटों का ये प्रोग्राम होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, प्यार का तोहफा है, इसे कबूल कीजिएगा।

0: लगता है, दूर से जो आए हैं ना आप, तो दूर से जब इंसान आता है तो टाइम तो थोड़ा सा लगता है सामीन, और वो भी प्यार का तोहफा लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो इनको वक्त चाहिए होगा दूर से आने के लिए और हमारे स्टूडियोज तक पहुंचने के लिए। बहरहाल सामीन, साथ आप हमारा निभाते रहिएगा। कहते हैं कि दूर रहकर भी जो समाया है हमारी रूह में, पास वालों पर वो शख्स कितना असर रखता होगा।
1: दिल किसी का

0: मोहब्बत में झुकना कोई कमाल, मोहब्बत में झुकना कोई अजीब बात नहीं, मोहब्बत में झुकना कोई उम्मीद अजीब बात नहीं, चमकता सूरज भी तो ढल जाता है चांदनी के सामने।
1: हम तुम्हें फूलों की वफाओं में नजर आएंगे, हम तुम्हें फूलों की वफाओं में नजर आएंगे, जब भी ढूंढोगे फिजाओं में नजर आएंगे।
0: सामने
1: निभाते रहिएगा। अगर आप स्टूडियोज में कोई मैसेज देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर है 07939849339 07939849339 पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडियोज में कॉल करके हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं तो स्टूडियोज का नंबर है 01426181810 01426181811 पर आप हमें कॉल करके अपने मैसेजेस दे सकते हैं। साथ आप सामेन हमारे निभाते रहिएगा जी। अब जो नगमा सामेन आप सुनेंगे वो किसकी आवाज में हमने लिया है?
0: मोहम्मद रफी की आवाज हो सकती है और साथ में शत्रुघ्न सिन्हा भी बोलेंगे।
1: अच्छा बोलेंगे
0: जी जी। डेविड धवन और शत्रुघ्न सिन्हा

0: बहुत ही प्यारा दोगाना समयत फरमाया है समय आपने लिंक एफएम से सुहाना सफर प्रोग्राम में
1: जी। समय ना मौसम चूँकि अब बदल रहा है और बहुत से लोगों को जो है ना वो कोल्ड भी हो रहा है, गले ख़राब हो रहे हैं, कुछ फीवर भी है, बुखार है, तो अपना ज़रा ख्याल रखिएगा। और इस मौसम में जब अचानक मौसम जब ऐसे बदलता है तो बहुत जो है ये लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है। तो अक्सर तो आम मैं आज भी कहीं पे गई थी तो बहुत से लोग जो है ना वो ज़ाहिर है उनको भी गला ख़राब और ज़ुकाम की शिकायत हो रही थी। कहते हैं ना कि हो गया ठंड से ज़ुकाम मुझे, ठंडी है, हो गया ठंड से ज़ुकाम मुझे, आ गया दवाई से आराम मुझे, करना पड़ा पानी में फिर काम मुझे, करना पड़ा पानी में फिर काम मुझे, हो गया फिर से जुकाम मुझे।
0: किसी का ठंडे पानी में जाए,
1: हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर किसी का काम ही ऐसा हो कि उसको करना पड़े तो फिर उसके लिए तो और कोई जो है ना वो और रास्ता
0: ऑप्शन नहीं
1: है बिल्कुल। कभी कभी इंसान सामने बहुत बेचारगी होता है महसूस करता है। ये मेरा जरा बात सुनिए कि बेगम साहिबा ने फ्लैट से निकलते वक्त दरवाजा लॉक कर दिया, फिर अचानक उन्हें याद आया कि चाबियां तो वो अंदर ही भूल गई हैं। पड़ोसन ने उन्हें परेशान देखकर पूछा, तुम लोग एक फाजल चाबी यानी कि एक्स्ट्रा चाबी क्यों नहीं बनवा लेते और उसे बाहर गमले में छुपा दिया करो। तो बेगम साहिबा कहती हैं कि वो तो हमने बनवाई हुई है और गमले में भी छुपाई हुई है।
0: अच्छा, फिर?
1: तो फिर परेशानी की क्या बात है, पड़ोसन ने पूछा। तो असल में कल इस गमले को धूप से बचाने के लिए मेरे शौहर ने
0: अंदर रख दिया,
1: उठाकर गमला अंदर रख दिया। अब बेगम साहिबा ने जवाब दिया, कभी कभी होता है कि आप करते हैं और फिर कई दफा ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन फिर जो है ना कि वो इंतजार करना पड़े कि दूसरा बंदा घर आए वापिस,
0: बिल्कुल,
1: तो फिर हम अंदर जाएं। तो कभी कभी आप कार की चाबी भी ऐसी, एक जमाने में सिस्टम था कि गाड़ी चाबी अंदर रह गई, दरवाजा लॉक हो गया तो
0: बड़ी मुश्किल पड़ जाती है।
1: हाँ जी बिल्कुल, तो हो जाता है कभी कभी, इंसान बहुत बेचारगी जो है ना वो महसूस करता है
0: जी। हम समय थोड़ी देर में आ जाएंगी जो एड्स, इससे पहले एक छोटा सा नगमा देखते हैं कौन सा है मेरे पास, शायरी होगा, जब भी जी चाहे नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग।

0: ये थी लता मंगेशकर समेत, आप हमारा साथ दीजिएगा। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। मुलाकात की आरजू अब ख़त्म हुई है ना, आपका और हमारा साथ रहा है ना यहाँ पर हैं समेत, यानी कि सुहाना सफर प्रोग्राम में साथ दीजिएगा।
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahman.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर, कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
12: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्म कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
13: And the winner is
14: Your business being heard on the radio.
15: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
16: Sheffield's very own community radio station.
17: Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahman.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
16: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.
1: मैं हूं आपकी अपनी गुलाब और ये लिंक एफएम है और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सुहाना सफर, इफ़त हमीद और मोहम्मद यासीन के साथ। मैं

0: आप हमारे साथ हैं मगर तश्नगी नहीं जाती, आप हमारे साथ हैं मगर तश्नगी नहीं जाती, ये क्या सितम है कि दरिया सैराब जैसा है।
1: बहुत खूब, साथ निभाते रहेगा सामिन, 07939849339 पर आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। स्टूडियोज में अगर आप कॉल करके मैसेज देना चाहते हैं तो 01426181 पर आप हमें कॉल करके अपने मैसेजेस दे सकते हैं। समीन, एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और ख्वाहिश भी करता है, जबकि मैं कितनी बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर भागता है बीमारी से। दौलत ने उसकी ढारस बंधाते हुए कहा, खुश नसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपने रब को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर खुदा को भूल जाते हैं। ये तो वैसे हकीकत है, फैक्ट है।
0: क्या इस दुनिया में लोग अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं?
1: जी,
0: जब दौलत सामने हो,
1: दौलत सामने आए तो बिल्कुल सही कहा,
0: अकड़ आ जाती है
1: जी।
0: बस अल्लाह माफ फरमाए
1: जी, जी
0: इतने असाब में रखे के असाब में रखे जिसका असाब देना आसान हो,
1: आसान हो बिल्कुल। इंसान में तकब्बुर ना आए। देखिए, दौलत है, आने जानी चीज है, लेकिन इसको पाकर इंसान को तकब्बुर में नहीं आना चाहिए।
0: जी जी।
1: तो आप में जो है वो ठीक है, दौलत है, कोशिश करें, आपके पास इतने पैसे आ गए हैं आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनके पास नहीं है आप उनकी मदद करें, उनकी जो है ना कुछ हेल्प करें, खाने पीने में और भी 100 जरूरत होती है इंसान की, उनमें आप उनकी मदद करें तो अल्लाह ताला आपसे यकीनन और ज्यादा खुश होगा। और ऐसे चीजों पे पैसे खर्च करने से मैं नहीं समझती कि आपके पैसों में कोई कमी आती है, बल्कि अल्लाह ताला आपको 10 गुना ज्यादा इंशाल्लाह देगा। समित साथ में बातें रहेंगे, बड़ी खामोशी आपकी तरफ से। वैसे ये बात है कि दो दोस्त एक महफिल में यासीन शरीक थे,
0: खामोश तो नहीं थे,
1: ठीक है, एक
0: जिससे हमारी कॉल्स खामोश हैं,
1: इसी तरह
0: कोई कॉल नहीं आ रही, कोई मैसेज नहीं आ रहा है जी।
1: तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कोहनी मारते हुए कहा, देखो वो सामने सीट पर बैठा शख्स मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने की बजाय सो रहा है। तो दूसरा दोस्त बिगड़ते हुए बोला, यार छोड़ो भी, इतनी सी बात के लिए मुझे जगाने की क्या जरूरत थी। तो लगता है कि सामने भी शायद संडे है, थक के सो गए हैं,
0: आराम का वक्त होगा, फ्राइडे सैटरडे लोग काम पर मसरूफ रहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल,
0: रिलैक्स डे होता है संडे, ये चीज हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम आपको जो है ना वो महजूस रखेंगे और अच्छे अच्छे नगमे, अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाएंगे।

0: कितने मजबूर हैं हम मोहब्बत के हाथों, कितने मजबूर हैं हम मोहब्बत के हाथों, ना तुझे पाने की औकात, ना तुझे भूल जाने का हौसला।
1: ज़मीन साथ हमारे निभाते रहिएगा। आप बात करते हैं ज़िंदगी के हवाले से। ज़िंदगी आपको पता है कि सिर्फ एक बात ही हमें मिलती है।
0: क्या?
1: ज़मीन, ज़िंदगी वो फूल है जिसमें कांटे भी हैं और खुशबू भी है। ज़िंदगी वो सफ़र है जिसमें ऊंचे नीचे रास्ते आते रहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: ज़िंदगी मुसलसल चलती हुई वो गाड़ी है जिसका पेट्रोल किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। ज़िंदगी शतरंज यानी कि चेस वो खेल है जिसकी समझ में आ जाए वो जीत जाए और जो ना समझ सके वो ये बाजी हार जाए। ज़िंदगी कहते हैं कि रियाजी यानी कि मैथ्स का वो सवाल है जो अगर चल हो भी जाए तो उसका जवाब सही तरीके से नहीं निकलता, यानी कि जो हल हो भी जाए। वो मैथ्स का क्वेश्चन है कि अगर ये हल हो भी जाए तो फिर भी इसका जो है वो जवाब सही तरीके से नहीं निकलता। जिंदगी के हवाले से कुछ
0: क्या किसी ने ये भी खूब कहा है कि किसी शायद आपने तजुर्बे से कहा होगा कि जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, ना जीना यहाँ बस में, ना मरना यहाँ बस में। जिंदगी यही है ना कि भाई चलती रहती है। आपके बस में तो कुछ चीज नहीं है, ऊपर वाले ने बागडोर अपने हाथ में रखी हुई है, जिस तरफ आपको ले चलता है उस तरफ आप चले जाते हैं।
1: बिल्कुल ऐसा ही है। समय साथ हमारे निभाते रहिएगा। 0114-261-8181 पर आप कॉल करके स्टूडियोज में अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। इसके अलावा 0793-984-9339 पर आप मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। चिड़ियाघर के सुपरवाइजर ने एक खातून से कहा,
0: क्या?
1: अपने बच्चों को रीछ के पिंजरे से जरा दूर रखिएगा।
0: जी।
1: तुम्हारे ख्याल में मेरे बच्चे इतने शरारती हैं कि रीछ को नुकसान पहुंचा सकते हैं? खातून ने बुरा मनाते हुए बोली, नुकसान पहुंच भी सकता है मोहतरमा। सुपरवाइजर बड़े आराम से बोला, पिछली मर्तबा इस रीछ ने जिस बच्चे को खाया था उसकी जेब में पेंसिल थी।
0: अच्छा,
1: जो बेचारे रीच के गले में फंस गई थी।
0: ओहो, अच्छा, रीच को नुकसान हुआ है इंडिया। ओहो, चिड़िया का घर था ना ये, ना कि वो मालक था चिड़िया का घर के, तो इस वजह से उसको जो अपना नुकसान जो सामने नजर आ रहा था। अब वहीद मुराद और आई थी रानी के एक फिल्म बहार फूल बरसो, ये एम सादिक थे जो इन्होंने पाकिस्तान आकर पहली फिल्म बनाई थी और सुपर हिट ये फिल्म हुई थी। चंदा रे चंदा, अब तू ही बता मेरा अफसाना।

0: वाह क्या कहना, बहुत अच्छी इसमें मलका इतरम नूर जान के नगमात थे। इस फिल्म में मसूद राना का भी एक था, मेरा यार बिछड़ा यार मिलेगा, कुछ ऐसे था जी फिर जी। तो अभी भी आबद मोगल साहब जो यहाँ से प्रोग्राम करते हैं ना, उन्होंने याद किया है कुछ हफ्ते, कह रहे हैं कि अगर हाजिरी रही है हमारे इन प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में प्लस अपना प्रोग्राम भी नहीं आजकल कर रहे, कह रहे थे काफ़ी मसरूफियात
1: हैं। आबिद मोगल साहब आपके फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुशी की बात हो सकती है, ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि आपने प्रोग्राम को पसंद भी किया, बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका
0: जी।
1: पता नहीं क्या बात है कि लोग जो प्रोफेसर जो है ना आपको इतनी तालीम देते हैं, इनका मुकाम है, लोग इनको ये क्यों इनके बारे में मशहूर है कि पता नहीं ये क्या इनका जो है ना ये दिमाग, हाँ जो है ना ये हाजिर नहीं होता इनका। असल में वो ऐसा है कि इतना कुछ वो उनके ब्रेन में चल रहा होता है तो कई बातें उनको नहीं याद रहती कि क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान जो है ना वो पढ़ाई की तरफ होता है, तो ये लेक्चर है इसको पढ़ाना है, बच्चों को ये सिखाना है, ये करना है।
0: प्रोफेसर भी जाकर बनता है जब प्राइमरी स्कूल से मिडिल और फिर जाकर FA BA और फिर जाकर प्रोफेसर बनते हैं, तो इतना सारा लोग हिफ्ज करते हैं कुरान पाक को, एक ही कुरान पाक होता है लेकिन किताबों में प्रोफेसर साहब इनकी कई किताबें होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो फिर उनका बेचारे का दिमाग का फिर
1: नहीं, ये बात हो रही है तंज़ो मिज़ाक के सामने। अच्छा, ये मैंने जैसे कि पहला भी मैंने कहा है कि जाहिर है किसी पे तो होगी, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, कोई भी प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन में कोई ना कोई जो है ना ये हम नोक झोंक जो है वो चलती रहती है, तो इसलिए इसको जरा ज्यादा आप सीरियस ना लें जी हाँ, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक जो है वो एजुकेशन से है, पढ़ने पढ़ाने से है। तो इसी तरह एक गायब दिमाग प्रोफेसर की बीवी अपनी पड़ोसन से कह रही थी, मेरे शोहर तो बिल्कुल भुलक्कड़ हैं, भुलक्कड़ हैं, इन्हें कोई बात याद नहीं रहती। अब मैंने इन्हें टमाटर लाने के लिए भेजा है मगर मजाल है जो टमाटर लेना इन्हें याद रहे।
0: अच्छा,
1: तो इतने में उनका शोहर खुश खुश घर में दाखिल हुआ और मुसर्रत भरे लहजे ने कहा, बेगम बेगम देखो तो सही क्या तमाशा हुआ है, मैं अभी घर से थोड़ी ही दूर गया था कि एक पागल आदमी ने मेरा रास्ता रोका और मेरे हाथों में बहुत सी नोटों की गड्डियां थमा दी और वो फिर भाग गया। ये तकरीबन 50,000 के लगभग रकम होगी बेगम। तो बीवी ने अपना माथा पीट कर पड़ोसन से कहा, देखा मैं ना कहती थी कि वो टमाटर लाना भूल जाएंगे।
0: वही बात हुई नहीं दिया। वैसे आपने भी कहा कि मैं भी इसी शोबे हूँ कि यह सभी आपका हाल तो नहीं है वैसे।
1: नहीं, आप अभी तक तो आपके सामने हूँ मैं जी। ये देखें वही मैंने आपसे सामने कहा है कि ये सिर्फ ऐसे बातें हैं, ये सिर्फ एक मिजाह का जो है एक तरीका है, वरना इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं है। बहुत ही काबिल एहतराम जो है ये शख्सियत होती है, और आज अगर आप हैं, आप कामयाब हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेसर, अपने असातिज़ा की वजह से, और उनको मेरी तरफ से सलाम।
0: ओ वालेकुम सलाम, मैं सलाम उनकी तरफ से कबूल करता हूँ आपका। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि आबद मुगल साहब के लिए स्पेशल नगमा मलका इतरम नूर जहाँ की आवाज़ में है, इसको पेश करते हैं, दिल तेरे कदम च रखा। अब तुम्हारी मर्जी है कि पैर इसके ऊपर पाएंगे या नहीं।

0: फिल्म सौदागर से ये था नगमा। राजकुमार और दिलीप कुमार ने 50s की दहाई में एक फिल्म थी पैगाम, उसमें काम किया था एक साथ। और अब सुभाष गाही ने इनको जो है ना वो अपनी फिल्म सौदागर में लिया था तकरीबन 50 बरस के बाद। हैं जी, दोनों को इकट्ठा किया था करेक्टर एक्टर रोल में। मल्टी स्टार फिल्म थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी ये। उस नगमा, उस फिल्म से हमने आपको
1: उम्मीद है कि आपने ये नगमा सामीन पसंद किया होगा। सामीन, वक्त जो है आहिस्ता आहिस्ता गुजर ही जाता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन किसी के साथ गुजरे हुए जिंदगी के चंद लम्हे, मोहब्बत भरे बोल, खलूस भरी बातें और मुरव्वत के जज्बात हमेशा इंसानी दिल में तरोताजा रहते हैं। अगर इंसान इन्हें फरामोश करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, मगर माजी के पर्दों में झांकते हुए जहन में चंद ऐसे नक्कूश उभरते हैं जिनके साथ अकीदत थी, मोहब्बत थी, चाहत थी, मगर वक्त के साथ साथ ये लोग भी जमाने की नजर हो गए। वो जिनके बगैर एक पल भी गुजारना मुमकिन था, नामुमकिन था, लेकिन वक्त की मजबूरियों से वो सब गवारा हो गया। सामिन, हमारे नज़दीक यादें फूलों की तरह होती हैं जो हमेशा तरोताज़ा नहीं रह सकते। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब इनकी महक मांद पड़ जाती है, लेकिन इस जज्बा में जो ताकत होती है वो शायद ही किसी और चीज़ में हो। बात हो रही थी वक्त की, मोहब्बत की, एहसास की।
0: ज़ाहिर है मोहब्बत, वक्त और एहसास दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो एक गुलदस्ता बन जाता है।

0: रंजेंद्र कुमार और बबीता की थी ये फिल्म जिसे हमने आपको नगमा सुनाया है।
1: समिन कभी कभी कहते हैं कि ऐसा ही होता है।
0: क्या कैसे?
1: कि न्यूयॉर्क की एक शाहरा पर एक कुत्ता एक बच्चे पर झपटा।
0: अच्छा।
1: इससे पहले कि कुत्ता अपना काम कर दिखाता, एक राहगीर ने कुत्ते की गर्दन दबोच ली और उस वक्त तक उसे छोड़ा जब वो मर गया।
0: ओ, हो, हो।
1: इस तरह से उसने उस बच्चे की जान बचा ली।
0: न्यूयॉर्क
1: टाइम्स का
0: एक जान बचाई और एक जान ले ली,
1: ये भी है। अब देखे ना, अब दोनों में से किसको ज्यादा जरूरी था बचाना।
0: अच्छा, जी, आगे, आगे।
1: जब ये काम हो रहा था तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्टर ये मंजर देख रहा था। उसने राहगीर की तस्वीर बनाते हुए कहा, सुबह न्यूयॉर्क टाइम्स के सफाई अव्वल पर एक तस्वीर और एक खबर शाया होगी।
0: अच्छा।
1: जिसकी सुर्खी ये होगी
0: क्या?
1: कि एक न्यूयॉर्कर ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर एक बच्चे की जान बचाई।
0: बिल्कुल।
1: सुर्खी तो बहुत खूब है, मगर मैं न्यूयॉर्कर नहीं हूँ, राहगीर ने कहा।
0: अच्छा।
1: तो फिर सुर्खी ये होगी कि एक अमरीकी ने जान पर खेल कर बच्चे को बचा लिया, रिपोर्टर बोला। ये सुर्खी भी बहुत उम्दा है, मगर मसला ये है कि मैं अमरीकी भी नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो, रिपोर्टर ने पूछा। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, जवाब मिला।
0: अच्छा।
1: अगले रोज न्यूयॉर्क टाइम्स के सफाई अव्वल पर शाया होने वाली खबर की सुर्खी ये थी।
0: क्या?
1: एक बुनियाद परस्त मुसलमान ने पालतू कुत्ते की गर्दन मरोड़ दी।
0: बुनियाद परस्त, क्या उसने टाइटल दिया
1: है। पीछे भी ऐसा होता रहा है, कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि जब कोई ऐसा हो जाए तो उसमें खुदा ना खास्ता कोई

0: मैं रियसन साहब एक जॉली मूड में हैं थे आज। वैसे तो मैं रियसन साहब के नगमे आप सुनेंगे तो जिस इंसान को रोना ना भी आए उसके भी आंसू निकल आते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा नगमा था। काफ़ी इसमें जो है ना वो प्यार मोहब्बत थी।
1: हमारे पास जो मैसेजेस आए हैं, मोहम्मद यासीन साहब आपका भी मैसेज भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं कि ये यासीन जो हैं,
0: हाँ?
1: ये आप कहते हैं कि दो नाम के जो हैं यासीन साहब हैं, ये कौन से यासीन साहब का है?
0: यासीन साहब हैं जो प्राइवेट हायर के एसोसिएशन के चेयरमैन
1: रहे हैं जी,
0: तो अब रिटायर्ड हैं।
1: अच्छा, यासीन साहब आपके मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेट शो है, शो आप पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा मैसेज जो है ये
0: आबद बुगल साहब ने पहले कहा था, जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई लोग जो है ना अक्सर अगर आप दावत देंगे उनको कि भाई यहाँ पर हलवा बन रहा है
1: तो आ जाएं
0: टीएमसी में कैफे पर, तो जरूर लोग जो है ना गठे हो जाएंगे।
1: अच्छा,
0: लेकिन आपने अलवा है नहीं है तो फिर लोग कैसे आएंगे आपके पास?
1: हाँ, ये भी बात है, लेकिन फिर अगले दफा जो है ना आप ऐसा करें कोई हलवे का बंदोबस्त कर लें,
0: फिर कहेंगे
1: हैं आप कर लें अपना, तो फिर उसके बाद आप कहेंगे आज हलवा यहाँ बना है।
0: लेकिन ये चीज एक मुश्किल है कि मुझे हलवा बनाना आता नहीं, खाना सिखाता है,
1: ये भी है। ठीक है, अच्छा, गुड एक्सक्यूज है ये जी सामी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे प्रोग्राम में यासीन साहब और आबिद साहब आपने प्रोग्राम सुना और अपने प्रोग्राम के बारे में राय दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। सामिन, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो 07939849339 पर आप हमें जो है ना ये मैसेजेस भेजिए। तो यासीन साहब तो ऑलवेज हमारा प्रोग्राम बहुत शौक से सुनते हैं, ये तो अरसे की बात है कि हमारे जो है ना ये बहुत ही रेगुलर हमारे लिसनर हैं।
0: जब जवान थे अब नौजवान हो गए,
1: बहुत अब से सुनते हैं, माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे यासीन साहब आपको। जी जी,
0: तो इस आयत आ रही हैं और इसके बाद जो है ना यासीन साहब के लिए एक अच्छा सा नगमा भी लगा देंगे
1: जरूर।
0: प्रोग्राम सामने सुनते रहिए लिंक एफएम से, ये प्रोग्राम हर इतवार की शाम को पेश किया जाता है सिर्फ आपके लिए जो हमारे लिसनर हैं ना, आप ही हमारे लिसनर हैं, तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जो आप प्रोग्राम सुनते हैं और साथ में कंट्रीब्यूट भी करते हैं।
2: You are listening to Link FM.
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
5: Lazier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, laziersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
6: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
7: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2 Day Project, bringing together different faiths and cultures cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
4: ये तुसा क्यों परेशान खलते हुए हो जी
8: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन से एमओटी सेंटर लेके जाऊं
4: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड्डियां नहीं एमओटी करने ओए कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस
8: ए ए एमओटी वाले हैं किधर
9: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं अच्छो एमओटी गड्डी निकलो ते मौजा करो फोन नंबर 07 8 6 7 8 6 2 5 8 5
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. And let's save lives together.
2: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
6: 96.7 Link FM.
2: You are listening to Link FM. You are listening to Suhana Safar
10: with Iffat Hamid and Mohammed Yasin.

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ। लिंक एफएम शेफील्ड।

0: दा तू सब का है खुदा, तू सुन मेरी दुआ। ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
2: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.
3: Coke Studios, Season 10.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही।
1: You are listening to Link FM.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीम अजारवी और तुसा सुन रहे हो लिंक एफएम।
4: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busy solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield or call 0114-308-2727. Nazir Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
5: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571-0009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
6: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
7: खुश इखलाक अमला लाजवाब सर्विस AAMOT। अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की MOT नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की MOT एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की MOT का काबिल एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT क्ले स्ट्रीट अटकलिव शेफील्ड S9 to VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 0786-786-2585।
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
1: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
8: 96.7 Link FM.
1: You are listening to Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक रशीद।
1: मैं और रंगदेव चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन कियानी है।
5: मेरा नाम अहमद असगर है।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक FM 96.7।